0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Advertise your business on Leica Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
1: Easing you through the night with London's biggest hits.

जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै चार जा और दसूनी होए नवा खना भी जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले

अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई

हत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
1: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: Your brain now, play the game now.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's

0: Weekend Breakfast is sponsored by Here Up Foods, specializing in all your kitchen needs, including spices, lentils, rice, and flour. Here Up Foods, king in quality, king in taste. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways, and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly, and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway, and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करे गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: हमारी रक्षक है वो.
4: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
4: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
6: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलीडे. कम टू अंबाला एंड ट्राई आउट आवर खोया बर्फी मेड फ्रॉम प्योर बफेलो मिल्क. यस, इट्स द सेम बर्फी यू गेट बैक होम, नाउ मेड इन इंग्लैंड विद मिल्क फ्रॉम अंबालास ओन हर्ड ऑफ बफेलो. ओनली फ्रॉम अंबाला. डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट, कम एंड टेस्ट इट फॉर फ्री दिस मंथ. नाउ ऑल्सो डूइंग द बेस्ट कर चाय, मसाला चाय एंड इलायची चाय, जस्ट लाइक बैक एट होम. अंबाला, हेरिटेज यू कैन टेस्ट. विजिट अंबाला.co.uk.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
8: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
9: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
7: Releasing nationwide by Zee Studios.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: Why are you abseiling down the front of your house, Ross? You have a staircase.
16: I like doing things the hard way, Albert.
15: Try something easier, Ross. Get cheaper off-peak energy. It's available at different times, like during the day or weekends. Just get a smart meter and choose a flexible scheme or tariff.
16: Ooh, I could batch cook some quiche.
15: Perfect. With a smart meter, getting cheaper energy is easier than you think.
17: Eligibility varies. Action required. Schemes and tariffs available to selected customers.
18: Hey, Rich Bagnaga here. Remember to join me on Reload every weekday from 1 p.m. until 4 p.m. on Like Your Radio.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Weekend Breakfast is sponsored by Here Are Foods, specializing in all your kitchen needs, including spices, lentils, rice and flour. Here Are Foods, king in quality, king in taste. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
3: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
4: हमारी रक्षक है वो
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सब का मतलब क्या है कौन कर रहा है
5: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: अल नूर, पुराना बाइतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
4: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: trending song, Tumak Tumak.
1: Damn.
0: I thought you said stop to me. I thought, huh? What's the means? Tumhari ye himmat? Literally, I was speaking, then you go stop. And I thought, huh? Ye kaun bol raha mujhe? But then I realized it's a song. Just does that happen? You know, you realize something else and then something else happens and, you know, it gets confusing. Happens to me all the time.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So for £1, you get 126.9 Indian rupees, 367.5 Pakistani rupees, 437.5 Sri Lankan rupees, 163.1 Bangladeshi takas, 86 Afghan Afghanis, and 1.3 US dollars.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in-store on 215 The Broadway, Southall.
0: Gold is currently trading at £104 per gram.
2: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Gold prices have hit a record high. It's time to sell your unwanted gold. Sell your gold with Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall, or buy online at gold-bank.co.uk. Anuj Radia on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: 100% pure ghee, made using a traditional Ayurvedic recipe with a rich aroma and authentic taste. No preservatives, just pure goodness. Call 073-44-520-666.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट हिमालयकारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
8: हमारी रक्षक है वो।
9: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
10: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
9: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
12: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
13: The bike.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
2: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल Protected.
4: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
5: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलीडे कम टू अंबाला एंड ट्राई आउट आवर खोया बर्फी मेड फ्रॉम प्योर बफेलो मिल्क यस इट्स द सेम बर्फी यू गेट बैक होम नाउ मेड इन England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। That's 8574-8410.
1: Safo Travel. Auto protected.

0: Price Match to Aldi, helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Whoosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
1: Weekend Bliss with Anandi Shah.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
3: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हमारी रक्षक है वो
2: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है ये
2: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम

0: For 15 years, Jennan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jennan. For you, for us and for everyone. The Jennan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at jennan.com and junaidjamshed.co.uk.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए मीनारज्वेलर्स.com. कॉल 0208767 7627.

0: भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती।
3: इसे हमेशा याद रखना।
4: काश कोई आ जाए, उन्हें समझाए।
5: Usayoni every day at 6 PM on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
6: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
7: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Okay, so this was the one that won Annika's cassette, a classic. Of course, this is the original track from the film that is Shakti, taking you back to 2002 with this one. Okay, Yangling Ji and Sonu Nigam Ji together. This is Ishq Kamina. Maybe next week it'll be the remix that wins. Make sure you get involved.
1: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Hey, like our radio. Goldrate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
0: Okay, gold is trading today at 104 pounds per gram.
1: Goldrate is sponsored by Gold Bank London. Gold outperforming all other investment options. So invest in gold with Gold Bank London. 215 The Broadway, Southall, or buy from us online at gold-bank.co.uk. Weekend Drive with Annika.
3: Like a radio. Because you're
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahut Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Oh, hello. You caught me practicing on my new slide whistle. You see, Specsavers have asked me to tell you about something very exciting. And as it's radio, I thought, well, it's always best to use sound, isn't it? So here goes. While prices everywhere are going, at Specsavers they're coming. Thank you. Eye tests now only £10 at Specsavers. I could have just said it, I suppose. Offer ends 31st of October, excludes Scotland. Conditions apply, see our website.
6: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
7: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
3: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
2: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
3: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
2: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
3: 07956458872
2: तो मिलते हैं गरबा में
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी ऑन योर रेडियो सेट्स. दिस वाज द क्लासिक ऑन लाइक अ रेडियो. वेल इट्स मी प्रियंका हियर कवरिंग फॉर नीरज.
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता मंगेशकर एंड कुमार सानू ऑन योर रेडियो सेट्स. यू आर लिसनिंग टू लाइका रेडियो.
1: लाइका रेडियो
0: एब्सोल्युटली. यू आर ट्यूनिंग टू लाइका रेडियो एंड आई एम हियर विद यू टिल 10 पीएम. वेल ऑफ कोर्स दिस आवर इज अबाउट टू यू नो फिनिश वेरी सून एंड नेक्स्ट यू विल हियर अ वेरी सूदिंग ट्रैक फ्रॉम द फिल्म वन एंड ओनली लापता लेडीज. वेल दिस इज लाइका रेडियो. ऑल्सो लेट मी टेल यू वी हैव सिस्टर रेडियो विच इज लाइका गोल्ड विच इज द लंडन्स नंबर वन एशियन रेट्रो music station, so which is available on 10:35 a.m. and DAB, so make sure that you tune in there as well.
1: Feeling smooth with Nirich.

0: 410.
1: No more worries for me or you.
0: Southall Travel, at all protected.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
3: The biggest Asian love songs in the capital
4: Laika Radio
3: The Love Sound